फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
6: माँ खाधो गरम करे थी वठा।
7: पुदर, थकल थकल पी लगे घणी, खैरियता?
6: तवां जो पुट सुमई नथो पूरी रात, माँ तो खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा।
8: मेरी थकन को भी तेरे
7: तू हल वे माँ चाहता।

0: हे वट एडियो शयूं खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तवा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मा के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन गिज़ा भाव ऐं ॿार ॿिन्ही जो हक़ आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: सुनी

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ईरान जो मौक़िफ़ आहे त समूरनि जंगी कार्रवाइनि ऐं पाबंदनि जो ख़ात्मो कयो वञे. अबनाए हुरमुज़ ते ईरान जे हक़ खे तस्लीम कयो वञे.

अमरीका ईरान में जंग ॿीहर शुरू थियण जा ख़दशा वधी विया। अमरीका जो बारूद ऐं हथियार सां भरियल जहाज़ इसराइल मोकिलण जो सिलसिलो तेज़ करे छॾियो। इसराइली मीडिया चयो आहे त अमरीका ईरान ते हमले जी तयारी करे रहियो आहे। हथियारनि सां भरियल कार्गो जहाज इसराइल पहुची रहिया आहिनि। बाज़रान इनकलाब जी अमरीका खे ॿीहर ग़लती वरजाइण ते फ़ैसिलातो जवाब ॾियण जी धमकी। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फसल शेखारसी चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जहाज जो जवाब फ़ैसिलातो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो। पाकिस्तानी सालसी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। तहरान अमरीका तजवीज़ुनि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत खिते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी नाहे, ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रचाव बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो, नई मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जी वाक़ियनि खां सबक़ु सिखणु घुरिजे। आबन हुरमत बाबति ईरान जा अमान ऐं ॿियनि सां राब्ता बि जारी आहिनि।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पंजनी के दौरे से लाहौर पहुंची वो लाहौर पहुंचने से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान बिलावल भुट्टो की आजियां कई जरियन मूजिब बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के दौरे दौरान पार्टी अगवाणों से मुलाकातू कदों।

कोकीन क्वीन अनमोल और पिंकी केतरा भेरा मुल्क बाहर वही पुलिस तफसील हथ करे वरता। पिंकी 25 दिसंबर 2018 से भाकू वही हुई। पिंकी जो मुड़स अगुण इंस्पेक्टर राणा अकरम बाबेरा भाकू वह हो। पुलिस मौजूद राणा अकरम पेरों भेरों पिंकी साथी किरण के पकड़ो हो। मुबैन तौर से 5 करोड़ और 2 गाड़ियों वी बिन्हीं के छड़े दिनों हो। कुकीन क्वीन अनवर और पिंकी जेल में कायम अदालत में पेश। पुलिस रिमांड की सजा अदालत 4 दिन जो रिमांड मंजूर करे वरतो। पिंकी का जांच दौरान मंशा के हवाले से घणियों शूं सामू आयो आन। मंशा के धंधे में मुलस किरदार नाला भी जाहिर किया वा। सिंध असेंबली में ाले घरू वजीर जियाउल हसन लंजार हैदराबाद कराची में गुटको तैयार थी रो है। मंशा के खिलाफ पुलिस कम कर रही है। तारीफ बचण घुर्जे।

सिंध में करप्शन चोट चढ़ियल है, अवाम बदहाल थी वह है, अमन अमान की सूरत हाल भी संगीन थी वही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे जी डी ए अगवाण सदरदीन शाह बिन साल सिंध गवर्नर सिस्टम सूबे के तबाह कर छो है, मतबादल क्यादत की जरूरत है। वफाकी हुकूमत अपोजिशन के बीहर गाल आज कर छी। वजीर अजम ने सियासी मामल बाबत सलाहकार राणा सनावाला है, तवा चाहो था तो 24 कलाक में अवे वजीर अजम से मीटिंग थी सके थी। वजीर अजम की आज मौजूद है, राजा नासिर अब्बास पर अख्तियार है अगते वे।

सुनते हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज, पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: GAFM 88
3: नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
3: जिंदगी

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कोन हलंदे छा बदे छोरा।
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आशिका। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, पर जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
3: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: माहे पाक फौज अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे लाइ पुरज़म आहे. पाकिस्तान की तरक्की के प्रोपेगेंडा या परडे सरप्रस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी जरिए रोके नथो सके. जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ी से तब्दील थी रो आहे. फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन टिनी फौज में गड़ियल सहकार से जोर भरियो.

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक ॾींहं जे दौरे ते कोयटा पहुची वियो। एयरपोर्ट ते गवर्नर जाफर खान मधुखेल वज़ीर आज़म जो आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म नेशनल एक्शन प्लान जी सूबाई एपेक्स कमेटी जे इजलास सदारत कंदो। वज़ीर आज़म कोयटा में सूबाई क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो ऐं अहम फ़ैसिला कया वेंदा। अमरीकी सदर ट्रंप जो सऊदी अरब, कतर ऐं यू ए जी दरख़्वास्त ते ईरान ते थियल हमिलो रोकण जो ऐलान। ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब जे वली अहद कतर जे अमीर ऐं गडि॒यल अरब इमारात जे सदर ईरान ते हमिलो रोकण जी दरख़्वास्त कई, जंहिं ते ईरान ते अॼु थियल हमिलो 2-3 ॾींहनि लाइ मुलतवी कयो आहे। लॻे थो त ईरान सां डील जो सुठो मौक़ो आहे। अहिड़ो मुआदो चाहियूं था जेको न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरनि मुल्कनि लाइ क़बूलियत जोॻो हुजे। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार फिटा करणु नाहे। ईरान जे मफ़ादनि, इज़त, वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पर्शियां चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी आवाम जे हक़नि ते हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी आवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रेगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी खातबुलंबिया ब्रिगेड जो चवणु आहे त ॿीहर हमिलो कयो वियो त ईरानी फ़ौज ट्रेगर दॿाइण लाइ तयारु आहे। तकिड़े फ़ैसिला ते ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी आवाम जो हर सतह ते दिफ़ा यकीनी बणायो वेंदो। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 ॾींहनि जे दौरे ते अॼु चीन पहुचंदो। रवानगीअ खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे रूसी सदर जो चवणु हो त रूस ऐं चीन जा मज़बूत लाॻापा आलमी सतह ते इस्तेहकाम जी ताक़त बणिजी चुका आहिनि। मॉस्को ऐं बीजिंग जो मक़सदु कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ इतिहादु ठाहिणु न पर आलमी अमुन ऐं खु़शहालीअ लाइ गॾियल सहकार करणु आहे। रूस ऐं चीन गॾियल क़ौमुनि ऐं शिंघाई तावन तंज़ीमुनि जहिड़नि प्लेटफॉर्म तां गॾिजी आलमी ऐं इलाक़ाई मसला हल करण लाइ कमु करे रहिया आहिनि। ऐं सिंधड़ी भरिसां पसंदि जे परणे तां पलांद में अगवा कयल 3 निगरियूं बाज़ियाब। पुलिस मौजिब गोट बाज़परी में कार्रवाई करे 3 निगरनि खे बाज़ियाब करायो वियो आहे। निगरनि खे 2 ॾींहं अॻु गोट अबू बकर जुड़े जो मां अगवा कयो वियो हो। मेडिकल खां पोइ निगरनि खे वुमेन पुलिस हवाले कयो वियो आहे।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
2: शहरी है कूलर जिसकी एयर थ्रो में है दम, आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। शहरी है कूलर्स, कूलर्स हर दम।
3: हाय
4: हाय,
3: जरा ध्यान से चलाओ, लिपस्टिक लगा रही।
4: डोंट वरी,
5: service tires ke flexible carcass se mile smooth ride bina shocks, grip service jaisi to fikr kaisi, service tires pakistan's global tire brand।
6: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड।
7: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
9: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी इबादी बवासीर इनन सबनन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विदो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे खां शाम 6 बजे ताई परोज जुम्मो 12 बजे ताई एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-760
4: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो बाहर निकरण वक्त कंध आई जिस्म के ढकियो घणो पानी वापरायण जी आदत ठायो ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो हल्का ढिलो आई हल्के रंगन वारो लिबास पायण के तरजीह दियो ई पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO आई स्टार नेटवर्क जे तावन सा आवाम जे आगाही लाए पेश कयो वयो
10: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलनि फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं बरोज़ जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार फिटा करणु नाहे, ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पेशान चयो आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हथनि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं।
1: ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी आतमल अंबिया ब्रिगेड जो चवणु आहे त ॿीहर हमिलो कयो वियो त ईरानी फ़ौज ट्रिगर दॿाइण जे लाइ तयारु आहे। तकिड़े फैसलाइते ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी अवाम जो हर सतह ते दिफ़ा यकीनी बणायो वेंदो।
0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कतरीहाम मनसब सां फोन ते राब्तो, बतरफ़न लाॻापन ऐं विचोभर जे तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ॿिन्ही अॻवाणनि जो खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान खिते में चिटदार अमुन जे क़याम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो।

रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते अॼु चीन पहुचंदो। रवानगी खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे रूसी सदर जो चवणो त रूस ऐं चीन जा मज़बूत लाॻापा आलमी सतह ते इस्तेहकाम जी ताक़त बणजी चुका आहिनि। मॉस्को ऐं बीजिंग जो मक़सदु कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ इतिहादु ठाहिण न पर आलमी अमन ऐं खु़शहाली जे लाइ गॾियल सहकार करणु आहे। रूस ऐं चीन गॾियल क़ौमनि शिंघाई तावन तंज़ीम जहिड़नि प्लेटफॉर्म्स तां गॾिजी आलमी इलाइक़ाई मसइला हल करण जे लाइ कम करे रहिया आहिनि।

जेकम बाद में पसंद परिणीता गोठ के साण वाले वाके खिलाफ सिंध असेंबली में मजहबती ठहराव पेश ठहराव एमक्यूएम के एमपीए मोहम्मद आमिर सदीकी पेश कयो। सिंध असेंबली के इजलास दौरान वजीर ने मेंबरन पारा मुस्लिम मामलों से बहस सीनियर वजीर शर्जीले नाम मेमुण चयो तो डॉलर जो अघ वधण सबब सजे मुल्क की रेड लाइन मनसूबन की लागत वधी है। रेड लाइन मनसूबे से कम कदर ठेकेदार मिक्स लेन से कम करण का इनकार किया हाँ कम बी कंपनी के दिनों है।

0: लाड़काणू जो मोरिया लूप बंद आबपाशी खाते के लिए सोनी झिरकी बनल आबपाशी खाते मोरिया लूप बंद के बोड के सीजन में कमाई जो जरियो बनाए छो अरबे रुपया खर्च करने बावजूद लाड़काणू जो मोरिया लूप बंद मजबूत न थो बोड के सीजन में बंद की मजबूती के लिए पत्थर भी रड़ी वो आबपाशी खाते पारा बंद के महफूज बनाने के लिए मुस्तकिल स्कीम ठाने बदला फ्लड फाइटिंग हारण जो सिलसिलो जारी 2024 में भी सागी साइड से वही मकदार में पत्थर उछलाया वह जे भी जया थे 2025 में दरिया में बुढ़ दौरान फ्लड फाइटिंग में किरोड़ रुपये जो पत्थर उछलाया वो जो भी लुढ़ी वो आपाशी खाधो बुढ़ खत्म थे हथ हथ से रखी वही रो
1: सिंधड़ी भरसा पसंज परणे दां पलंद में अगवा कल टे निगरू बाजियाब पुलिस मौजिब गोट बाज मरी में कार्रवाई कर टी निगरन के बाजियाब कराया वो है निगरन के बडी अगोट अबू बकर जुड़े जो अगवा किया वो हो मेडिकल का निगरन के वुमेन पुलिस हवाले किया वो है
0: कश्मीर में बदमी से जब्तो न आयो इंडस हाईवे भरसा गोट दीन मोहम्मद नाइज के हथियारबंद की काह घर धनन की मदामत हथियारबंद घर धनी वसू ए फरहान नाइज के जख्मी कर चौपाया माल का फायरिंग कंदा फरार थी वया जख्मी गोठाना अस्पताल मुंतकिल चोरी थियल माल वापस कराने जो मुतालबो
2: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
3: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद
4: हाय
3: हाय
4: जरा ध्यान से चलाओ लिपस्टिक लगा रही हूँ
3: डोंट वरी Service tires ke flexible carcass se mile smooth ride bina shocks grip service jaisi to fikr kaisi service tires pakistan's global tire brand the suncrop group ka diamond hybrid rice seed mazboot tane lambe aur sehatmand munjaron ke sath pakistan mein sabse zyada paidawar aur jhaad dene wala suncrop group ka diamond rice seed किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद
5: चेरी है कूलर जिसकी एयर थ्रो में है दम आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए गर्मा
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
7: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके
8: This program is brought to you by
9: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
10: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंजो चेकअप करायो ए होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करयो जी हां हाने अवाजे पंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ए जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ए सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते के लिए 0327-99-84-763
11: कमी गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो बारन बुजुर्गन ए बीमार मानुन जो खास ख्याल रखो दीह जो तमाम गरम वक्त सुबह 11 का शाम 4 बजे तई उस खां पासो करियो गर्मी खां बचाओ तवां जे एहतियात में आहे पांजे ए पांजे प्यारन जी हिफाजत करियो ए बेन खे भी जान दियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ए स्टार नेटवर्क जे तावन सा आवाम जे आगाही जे लाए पेश कयो वयो
12: सिंध की होत तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजीव दंदड़ा सभी समातन की मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। पुरकुलों दुआ के समान चाहतों की बारिश लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत चांद से दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं ZFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन बेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में अगर आप नहीं जानते, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो भाई इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल भी रख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती बढ़ती रहे, आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए, तो आपको हम बताएंगे कि क्या तरीके कार फॉलो करके कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे और आप खूबसूरत और पाले पाले बनते जाएंगे। ओके जी, तो सब कुछ बताएंगे लेकिन कितना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल ही जरा अपना तारीफ करवा देंगे लिसनर्स फॉर रिसेंटिंग मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है। हाँ जी जनाब, प्यारे से प्रोग्राम में आप लोग प्यारे प्यारे लिसनर्स के साथ साथ आपको प्यारा बनाने के लिए उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारा शो सुन रहे हैं, तो जनाब अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताएंगे। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसे है आपकी हालत है? उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बकुल मूड के साथ बकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर आपने एंट्रियां मार ली। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। तो यस, आप हमारे साथ मौजूद रहिए और बताइए कि आप भी हमारे साथ कहां से सुन रहे हैं, ये भी मुझे पता होना चाहिए। ओके जी, और यहां पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए या फिर होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब अब जल्दी से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में बनेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदरा अली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाते और यहाँ पर आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं जी। आगा से प्रोग्राम करते एक बहुत ही प्यारे से कलाम के साथ, कलाम सुन के उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो आज के प्रोग्राम में क्या होगा ये जरा आप लोगों को बताएंगे। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि आपका हमारे साथ पूरी 3 बजे तक।

है जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा कलाम आपने इंजॉय करा। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम सुन रहे हो, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे ये जरा आप लोगों को बताते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है, तो जनाब आज के प्रोग्राम में टॉपिक आप लोगों से पूछा जा रहा है वो भी पहले बता देते। तो पहले जरा टॉपिक बताया जाए कि आप लोग अगर मैसेज करें, कमेंट करें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने जो बात करनी है वो किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ओके, सो आज जो मेरा आप लोगों से सवाल होगा वो बिल्कुल ये होने वाला है कि आप मुझे बताएं, कई मतलब ऐसा हो जाता ना कि हम जब कुछ हमारी पुरानी ऐसी चीजें होती हैं, पुरानी ऐसी ना हमारी कुछ आदतें होती हैं, जैसे अगर हम याद करते तो हमें हंसी आती, या फिर अगर देखा जाए तो हमें ना पहले जैसे बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था पिक्चर्स कलेक्ट करने का, या फिर हमें कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मौका हो, तो हम अपनी पिक्चर्स बहुत ज्यादा जो ना वो खींच रहे होते। लेकिन आजकल देखा जाए तो जैसे क्रेज खत्म होता जा रहा है, वैसे हमें वो तमाम चीजें जो ना वो क्रिंज लग रही है। हम ये सोचते हैं कि अगर वो चीजें हम पहले ना करते तो कितना ना अच्छा होता। तो बिल्कुल आज आप मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको अपनी पुरानी फोटोज देखकर हंसी आती है, या आपको लगता है कि ये क्या मैं क्रिंज चीजें कर रहा होता था अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ में कर रही होती थी। ये आज आप मुझे बताएंगे क्या आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखकर हंसते हैं अपने ऊपर या नहीं, या फिर आपको लगता है कि भाई जो हमने करा वो बिल्कुल सही करा था और हमें तो और भी ज्यादा फोटोज लेनी चाहिए थी। अक्सर जो है ना लोगों की माइंड से जो होता है ना वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, कुछ लोग अलग सोच के मालिक होते हैं, कुछ लोग अलग सोच रहे होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आज आप मुझे बताइए जरा कि आप क्या अपनी पुरानी फोटोज देखकर हंसते हैं अपने ऊपर या फिर नहीं। और साथ साथ अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज, और अगर आप जीए लाड़काना FM 88.8 सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। वहां पर अगर आप आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, और साथ साथ बताइए कि हाँ जी भाईजान आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ साथ अगर आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती है जो कि आप हमारे शो से कर रहे होते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्ट अगर आपको बताए जाए तो प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ही ज्यादा मजेदार है, जिन प्रोडक्ट में आप लोगों की खूबसूरती का जिक्र होता है, और आप लोगों की खूबसूरती के जिक्र के साथ ना ऐसा है कि ये भाई प्रोडक्ट इतने जबरदस्त तरीके से तैयार किए गए कि ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करेंगे। तो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो उनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा कौन से प्रोडक्ट आप क्यों लगाएंगे। अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट है और आप क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हैं या नहीं। तो अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं अवेलेबल तो उसके लिए आपको नंबर बताया जा रहा है जिसके ऊपर आप रابطہ करें, और नंबर के ऊपर रابطہ करने के बाद उन्हें बताइए कि भाई आप अवेलेबल कराना चाहते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अपने गोठ में, अपने शहर में, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप भी परचेज कर सकें आराम से। तो नंबर है 03-15-799-0595, नंबर जल्दी से डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। ओके जनाब, तो जल्दी जल्दी से इतने ही आप कमेंट्स कर देते हैं कि भाई जो पहले वाले कमेंट्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से आपके कमेंट्स पढ़ लूँ। और हिदायतुल्लाह अहमदानी हमें सुन रहे हैं और आपने गाना लिखा है शायद, चले मैं कोशिश करती हूँ ये वाला गाना लगाएंगे। अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं, आपने गाना लिखा है मुमताज मौलाई की आवाज में, मैं बिल्कुल मुमताज मौलाई की आवाज में आपको गाना सुनाऊंगी। आदिल हुसैन, आप ये जो कमेंट है ना ये लिंक वाला, ये जरा दोबारा से मुझे शेयर कीजिएगा क्योंकि वो ऊपर चला गया और मैं समझ नहीं पाई कि आपने गाना कौन सा बोला। उसके अलावा हिंदी चाचा खाले जूनी जो हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम। जहीर अब्बास परवो हमारे साथ, गुड आफ्टरनून जी, आपको भी वेलकम हो गया। और तवां गानो चयो आहे बिल्कुल हलाईंदासीं तवां जो गानो, तवां पंहिंजे भाइरनि खे सलाम ॾिना। और सईदा बुखारी हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम जनाब, क्या हाल है आपके? मोहतरमा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी? और आपने दुआ दी है, बहुत शुक्रिया। और वेलकम करते हैं आपको। सनावला बिरोही हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम सनावला बिरोही भाई जान। और स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा खुशाई तबियत मूड माहौल मानू, तो सब खुश आई जी जी माँ परिवार सब खुश आए, ताँ बुधाए ताँ सब खैर खुश। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, जिंदगी रोज जलाता हूँ शम्मा की मानद, बुझ तो जाऊंगा मगर सवेरा तो गिर जाऊंगा, हाओ हाओ खबर। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकवेंट से, वेलकम जी। हजार खान जतोई भाई हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हजार भाई, छाला ताने खुश आयो, प्रोग्राम तव्हांखे वणे पियो सो मोहबतूं तव्हांजो।
अच्छा किशोर भाई कहते हैं वीडियो पुश कर लाइव स्ट्रीमिंग में मसलो आ कलख हां अलाई छो मुखे लगे पे अजु सही से मुंह थले पई लाइव चलो ता बुदा शरू दिसु ता को मता मसलो हो जे और ये है जी उदास लड़की हमारी ओपी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम ओपी हालत आने को जायो और चाचा खाली जुने जो कहते हैं आपकी हालात कैसी है कल तो आप जी आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ मजे में और सैयदा बुखारी आप हमें लाड़काना से सुन रही हैं बहुत शुक्रिया जी लाड़काना में आपको रेशम गली से इजीली जो है ना वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं तो आप जाइएगा मालूमात लीजिएगा कहाँ कहाँ पर आपको

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White H Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं पर जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: सचल की सरमस्त धरती
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: episodes of Mustard. Only on G Radio 98.
1: सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हाँ जी, हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो, मीरपुर खास मटियारी, सेक्रेट मेहरा, पुमातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो बिल्कुल भाईजान, अगर आप जानना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप लोगों को हम बताते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाले हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं गर्मियन जो मौसम आए, गर्मियन में केयर क्रीम लगाएंगा बाबा, तां लगाएंगा, ऐसा लगाएंगा, सब लगाएंगा, बुधाइंदा नैन हुआ एकड़ी अलग आला. अच्छा, यह हकीकत है, गर्मियन जो मौसम में अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि त बाबा असां क्रीम नायूं लॻाईंदा, पर हू लॻाईंदा आहिनि, लॻाईंदा ऐं लॻाईंदा कयो, पर उहे प्रोडक्ट लॻाईंदा कयो जेके तव्हांजी स्किन मुताबिक़ हुजनि, जेके गर्मियुनि जा प्रोडक्ट हुजनि, सम्झो था. ओके, सो अगरि तव्हां बि गर्मियुनि में कोई सुठो प्रोडक्ट चाहियो था त तव्हां वटि हुजे, तव्हां वटि नाहे कोई बि ऑप्शन, तव्हां वटि इलाही सारा आहिनि, लेकिन तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे त असांखे छा करिणो आहे, त तव्हांखे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करिणो आहे. व्हाइट एज जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ आहिनि. ऐं व्हाइट एज जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगरि असां ज़िक्र कयूं व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो, त व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका आहे नाइट क्रीम आहे, राति जे टाइम तव्हां लॻाईंदा. एवोकाडो एलोवेरा से तयारु थियल आहे, खीर बि शामिलु अथसि जनाब हिन जे अंदरि तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाइण जे लाइ. उन खां

अॼु मूं ट्राए कई, कोशिशि कई त प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां, त थोरो अलॻि ॿुधायो, अलॻि तरीक़े सां. रोज़ तव्हांखे उर्दू में ॿुधाईंदी आहियां, सो अॼु मूं सिंधी में ॿुधाए छॾियो, सम्झो था. जीअं सभिनी खे ॻाल्हि सम्झ में अचे, उन्हनि माण्हुनि खे जेके सिंधी सम्झंदा आहिनि, सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि, असांजा सुहिणा सिंधी आहे. हा बाबा, वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका न, हुनजे अंदर एवोकाडो आहे, एलोवेरा ऐं खीर बि अथसि. इहे टई चीज़ूं अथसि, टई चीज़ूं मिली करे तव्हांजे लाइ वाइट एज जी क्रीम ठही अथव. सो लॻाइजो, सही आहे.

I love this song. बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये दर्दे दिल कहती हैं कि सिद्रा मीरपुर खास में वाइट एज नहीं मिल रही. बिल्कुल ये बात मैंने आपकी कल बोली थी बहर इरफान सियाल साहब को, उन्होंने कहा था कि जल्दी हम मीरपुर खास में अवेलेबल करा देंगे. जहां जहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप बता दिया करें ताकि हम आपके एरिया में अवेलेबल करा दें, क्योंकि हमें आप लोगों से मोहब्बत है. हम चाहते हैं कि आप सारे लोग खूबसूरत हो जाएं, ठीक है. और ये हमारे साथ हमारी नोरी मौजूद है. हेलो हाय प्यारी सिद्रा, कैसी हो? शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत सालों के बाद शो सुन रही हूँ. आपका आवाज बहुत अच्छी है. मैं नोरी कराची से, सलाम सबको. वालेकुम अस्सलाम जाने हो. वैसे ये गाना वैसे ही लगाया है मैंने. आई ना समझो कि कोई रूठा है सिद्रा से. अरे ना भाई, अपने फेवरेट गाने सुनने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि भाई अगर ये वाला मोमेंट हो जाए तब हम अपने फेवरेट गाने सुनेंगे. ना नको, बिल्कुल नहीं, सुने जब आपका दिल चाहे. और ये निदली कहती है कि पता नहीं क्या हुआ है जी, ये मुझे भी समझ नहीं आई इस व्हाट्सएप वाले कमेंट किया.

दी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावत से लगा दी जाइए खूबसूरत होती जाइए। अच्छा निदा कहती है कि कसम से मेरे साथ सुबह ही ये सीन हुआ था, मैं अपनी ओल्ड पिक्स वीडियोस देख रही थी और सोच रही थी वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, पहले कैसे थे और अब देखो कैसे हैं। तो ऐसा ही है भाई, ये बात जो है ना मैंने मतलब देखकर और समझ कर ये टॉपिक आप लोगों से पूछा क्योंकि ये ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मुझे तो अपनी पुरानी तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, लुकिंग क्यूट यंग एंड स्मार्ट योर टॉपिक आंसर कहो तो। नहीं नहीं नहीं रहने देते, आप हमें चाची के लुक में अच्छी लगते हैं।

आदिल हुसैन वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कि ये तो तोहीने वफा है कि तुझे भूल के हम अपने जख्मों पर किसी और से मरहम चाहें। इश्क की आग में कुंदन ना सही राख सही, हम किसी तोर ना उस आंच को मधम चाहें। वाह वाह वाह वाह, वेरी नाइस, डाढ़ी बली शायरी। गानों भलो लाया था ममताज मलई जी आवाज में गानों आए जनाब। उनका अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि टॉपिक, तुम पुरानी फोटो की बात करती हो, मुझे तो आज भी हंसी आती है अपनी पाली पाली फोटो देखकर, यानी कि आज भी अगर आप अपनी फोटो निकालते हैं तो स्टिल आज के टाइम पर भी आप अपने आप पर हंसते हैं, तो इसीलिए कहती हूँ व्हाइटिश लगाओ।

मेरा साबुन को ज्यादा ही फास्ट है। अरे जहीर अब्बास भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में प्रोग्राम सुन रहे हैं। और मुझे बताएं वाइट एश के प्रोडक्ट्स आप कब इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे ये भी बताइए जरा। और ये अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं। लो कैसे हैं? ठीक ठाक है।

किशोर भाई कहते हैं टॉपिक अदी, मैं सच में क्या बताऊं आपको, मेरी पिक्स तो पूरा घर देकर मुझे तंग करते हैं और मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। सहिया और हजार खान भाई शो वड़े तो मोबितू लाड़काने वारा माण्हू वाकई सोड़ा हूंदा आहिनि। छो त लाड़काने में वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलनि था, तव्हांजे बि एरिया में मिलंदा जॾहिं तव्हां थोरो हथ पेर हणंदा ऐं तव्हां नंबर ते राबितो करे हुननि खे ॿुधाईंदा त बाबा तव्हां बि अवेलेबल कराइण चाहियो था पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते, जे तव्हां बि लाड़काने वारनि जीअं सुहिणा थी वञे। सो नंबर अथव 03-15-799-0595 नंबर ते राबितो कयो। सही आहे कहिड़े गाने कट ते आ ॿुधायो अच्छा एसन अरबाणीअ में सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम एसन, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अरे बाबा 10 रुपया गुम थियण ते माण्हू उदास थींदो आहे। छा 10 रुपया त अॼुकल्ह ॿार बि नथा वठनि, महांगाई पेतरी थी वई। अच्छा मुझे भाणी जी आहे न नंढड़ी, उहा 10 रुपए खे डी कोठींदी आहे, डी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां मूंखे यादि आयो, उहा नंढड़ी आहे सफ़ा नंढड़ी चवंदी आहे मूंखे डी ॾियो, माना उहा 10 रुपया वठंदी आहे, सम्झो था, जेके थोरा हुन खां वॾा आहिनि उहे 10 रुपया बि न आहिनि वठंदा, 50 बि नथा वठनि।

ठहंदो आहे बाबा, ठहंदो आहे। ओके साईं, वाह जो गानो हलायो थम। वासा भाई हमारे साथ मौजूद है। वासा भाई हेलो, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये जी हमारे साथ हैं हालार अहमद भाई, आपको भी वेलकम करते हैं। दर्दी दिल आपको भी वेलकम करते हैं।

0: अच्छा वैसे बहुत ही प्यारा गाना, ये जिस गाने के ऊपर बना हुआ ना, वो गाना मेरा बड़ा फेवरेट था किसी टाइम में। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार करे सो प्यार करे, जो नफरत की सो नफरत की। ॾाढो वीआईपी गानो आहे। हुन गाने जी कट ते पर मूंखे हिनमहिल ताईं कंहिं कोन ॿुधाए लॻे थो तव्हां खे अॼुकल्ह गाननि जी कट करण न थी। प्रोग्राम में तव्हां आसे सेकंड मौजूद रहंदा पूरी पूरी टे बजे ताईं। टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक वठूंगा, सही आहे? उन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटींदासीं। तव्हां करी न वञो, हिते वेठा हुजो। मां ओ हीअ वञी ओ हीअ मोटा वठी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, सुनते रहिए और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहिए, सही है? मां मोटी अचां थी।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
4: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: कमी गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी। महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो। बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो। ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो।
6: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
7: सुनते रहो GFM 90.8।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अजी टाइम इस्तेमाल करना तो लड़का लड़कियूं सभी लगाईंदा सही आहे तव्हां सभु लॻायो ऐं ख़ूबसूरत थी वञो हुन खां अलावा अंकल आंटियूं बि लॻाईंदा बाबा एजेड आहियो तव्हां पोइ बि लॻाए सघो था बस ॿार न लॻाईंदा ॿारनि खे जेको आहे न ब्यूटी क्रीम खां थोरो पासे न कयो ॿारनि जे लाइ वाइट एजी लवली क्रीम अथव मौजूदु तो ॿारनि जे लाइ वाइट एजी लवली क्रीम तव्हां यूज़ करे सघो था ऐं अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा त पोइ तव्हां डायल कंदा 0315-799-0595 हिन नंबर ते राबितो कयो जे तव्हांजे एरिया में बि जी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले ऐं वाइट एज जा प्रोडक्ट्स मिलनि बिल्कुल जी अवेलेबल कराईंदा हलो सुहिणा सुहिणा थींदा हलो जी तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे वापसि मिली वञे अक्सर ईअं थींदो आहे ये ले अपना गाना सुने जरा कहती है बिल्कुल सिडो मुझे अपनी पुरानी पिक्स पर हंसी आती है कि मैं कांटे ज्यादा लगाती थी इस बात पर हंसी आती है चलिए हमारी प्यारी लुबी हमारे साथ माते बहुत शुक्रिया ओके जी फजीला सिंधी भी हमें सुन रही है फजीला सिंधी क्या कह रही है वालेकुम अस्सलाम और हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून और आपने सब सुनने वाली लड़कियों को सलाम दिए हैं और अपनी प्यारी अम्मी जान को भी सलाम दिए हैं बहुत शुक्रिया जी और कायनात को भी सलाम दिए हैं इरम हमें सुन रही है इरम आपको वेलकम करते हैं प्यारी सी लड़की और ये हमारे साथ हैं कहते हैं फरमाइश वाला गाना न था हलायो भाजी तवा मुझे फरमाइश हलायो कावड़ आशा मुनवर मोराई जो गानो हुयो मरा त कंहिंजे लाइ मरा इहो गानो भा मां कोशिश कंदमि हलाईंदमि सही आहे और ये हमारे साथ ही कश्यप कहती हैं दिलबर जानी आप कैसी हैं गुड आफ्टरनून हम भी अच गए आपके लाजवाब शो में सॉन्ग सुनवाना तुम मिले जब से फील हुआ तब से ओके और दादू खां इमदाद जतोई अब्दुल खालिक जतोई हैं मुबशर हुसैन जतोई किफायतुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है लगता है भाई आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है सो आप सब भाइयों को वेलकम करते हैं प्रिंस अहमद अली रिंद हैं फ्रॉम अहमद अब्बास वालेकुम अस्सलाम कहते हैं गाना ओके जी गाना सुनाएंगे और लिखा है कि जी बिल्कुल छोटे हैं और हंसी आती है हाँ इस बात पर हंसी आती है कि हम छोटे थे इरम कहती है आप ही माँ ठीक आया मीरपुर खासी अब्दुल्ला बहर है वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम की रिजल्ट जबरदस्त है प्लीज आज कोई भी शमन का गाना लगाएगा बिल्कुल जी शमन का गाना आपने सुना होगा मेरी प्यारी भाई और गोट मोहम्मद तैयब थेबू को हबीबुल्ला थेबू है ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का गाना लगाइए ओके ओके जी लगाते हैं ओट मोहम्मद तैयब तबू खां हबीबुल्ला भाई तव्हां चयो आहे तव्हांजो शो ॾाढो भलो आहे तव्हां ॾियो हाल अहिवाल जेकी प्रोडक्ट ॿुधायां थी लॻाया आहिनि कोन लॻाया आहिनि अगरि लॻाया अथव त ॿुधायो बाबा किथे पहुतायो ॻाल्हि किथे पहुती आहे जीअं असां अॻिते जेको आहे न त इहो सम्झी सघूं त कहिड़ा कहिड़ा असांजा लिसनर आहिनि जेके ही प्रोडक्ट लॻाइनि पिया जेके मां तव्हांखे ॿुधायां पई सो वाइट एज जा प्रोडक्ट आहिनि उन खां अलावा डी स्किन जा प्रोडक्ट आहिनि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो वञो उतां वञी परचेज़ करे अचो ऐं पोइ लॻायो पोइ सुहिणा सुहिणा थी वञो टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं तव्हां काॾे न वञिजो हिते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। सुबह

0: तो जुल्म ही हुआ ना। इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद
1: दिलाता। मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खा मेरी कसम, तुम इसके बारे में

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछा लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर रूह के सामने तमाशा बन गई मामा।
4: अच्छा, अच्छा, अच्छा।

0: तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
2: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट हॉस्पिटल
3: को हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन कंसल्टेंट
4: ज्यादा फेवरेट है। तो अगर ये गाना जब भी प्रोग्राम चलता है तो मैं सोचती हूँ कि बस ये एंजॉय करें। मोहब्बत करने मोकलानी नाय बाबू सलामत सलामत।

Alle von Norden an der

0: कहीं भी नहीं।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: सेल लगाए बेटी के सफा नौ के छिदा
1: जिंदगी की लहर
2: जल्दी तो खराब हो जाती है
0: नन्न सोनी सरगोदा बेटी से सारा 6 महीना गारंटी पे देने बेटी जी
1: वाह वाह ओ साईं जल्दी करियो हाणी वन्यो ए बेटी ठाराय छो
0: सरगोदा बैटरी सर्विस पहले यूपीएस ट्रैक्टर ए सोलर वगैरह की खराब बैटरी में नई प्लेटू सेल लगाए बैटरी के नौ बनाओ असा वट भगल ए फाटल बैटरी का कम तसली बख्श जायती कर वो है
3: हाने सरगोदा बैटरी सर्विस ते सोलर यूपीएस इन्वर्टर की खराब ट्यूबलर बैटरी में ओरिजिनल प्लेटू ए सेल पिण लगाया वन था
0: मिलंदड़ जुलंदड़ कम का धोखो न खाइंदा सुखे

रखें। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मज़ीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333789634 एंड 0315

0: मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 0334224186 9।
1: ओ मलूकर
2: खैर दाए दूरी
1: जल्दी कर जल्दी साल वांगुर हिन साल भी कप्तान हाइबर्ड साल जो विज वठी अचो जी हिन साल भी चंची पैदावार हासिल करियो
2: कप्तान हाइब्रिड साल जो विज अहां के लिए 125 का हिस्सो

0: मिडलैंड इंटरप्राइजेज जो कप्तान हाइब्रिड सारन जो बिज पंजे वेजे कप्तान फ्रेंचाइज ता हासिल करियो
1: रابطے ऐ मालूमात चलाए
0: आरएसएम लाड़कानो
1: सजाद हुसैन बुगियो मोबाइल नंबर 0312134205 खुशखबरी अमा जे पंजे शहर लाड़काने में जुनेद मेडिकल सेंटर जो आगाज थी चुको आहे
0: डॉक्टर आमना भट्टी एमबीबीएस एफसीपीएस गायनोकोलॉजिस्ट और किन जे बीमारन जी माहिर
1: हार्मोन ऐ महवारी जा मसला चेहरे के गैर जरूरी वार और मोटापो अचेतानी और पेट जा बोझा और बेउलादी जो खास इलाज कर
0: हमल की हिफाजत हमल जहा मसला जो

0: जी बीमारियों की माहिर 24 कलाक सर्विस ए तजुर्बेकार डॉक्टर ए अमले सां गडो मुख्तलिफ बीमारियों जो इलाज सही तरीके सां कयो वने थो
1: याद रखना असा वट अल्ट्रासाउंड क्लिनिकल लेबोरेटरी फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे इन खान अलावा मरीजन जी सहूलत लाए मुकम्मल एसी रूम सोलर सिस्टम ए स्टैंड बाय जनरेटर जी सहूलत मौजूद आहे
0: चकासो टाइम रोजानो शाम जो 5 बजे खान रात जो 9 बजे तक
2: अजरक के रंगों से रंगी
1: मेडिकल सेंटर मेन सेंट्रल कॉलोनी रोड लाड़काणो
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: 2472497
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर लाड़काणे में दिलदार अखियुनि जी क्लिनिक जो बाक़ायदा आगाज़ कयो वियो आहे डॉक्टर सफदर अली अब्बासी अखियुनि जे बीमारियुनि जो माहिर ऐं फेको सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो हिते अखियुनि जी बीमारियुनि रेटिना यानी अखियुनि जो पर्दो ऐं ग्लूकोमा यानी कारो पाणी मोतियो पाणी ऐं इन खां सवाइ शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जी बीमारियुनि जो पिणु इलाज कयो वञे थो डॉक्टर सफदर अली अब्बासी एड्रेस नज़ प्रिंस मेडिकल स्टोर शेख जैद अस्पताल रोड लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताई आचर ते सुबह जो 9 बजे का मंझन जो 2 बजे ताई
5: राबते जे लाए मोबाइल नंबर 03163566286 खुशखबरी लाड़काणे जी पहरी लेडी डॉक्टर हाइड्रा फेशियल ऐं चमड़ीअ जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर इरम जूणे जो MBBS RMP डिप्लोमा इन डर्माटोलॉजी कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट स्किन कॉम्प्लेक्स चांडका मेडिकल कॉलेज ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो हिते कुंवार जे चेहरे जी खूबसूरती वधाइण लाइ ब्राइडल बीबी ग्लो मशीन ज़रिए कयो वञे थो अॼु जे जदीद दौर में हाइड्रा फेशियल मशीन सां कयो वञे थो क्रीमुनि जो मिक्सचर मशीन पाण ठाहे थी ऐं मशीन चेहरे जे अंदर लिकल शयुनि खे छिके ॿाहिरि कढे थी गंजपन यानी मथे जे वारनि छॾण जो इलाज PRP ऐं इंजेक्शन सां कयो वञे थो चेहरे ऐं जिस्म ते गैर ज़रूरी फुड़नि खे इलेक्ट्रो कॉटरी ज़रिए ख़तमु कयो वञे थो चेहरे ते छाउनि जो इलाज PRP ऐं मोहिड़नि जो इलाज केमिकल पीलिंग सां कयो वञे थो जिस्म ते एलर्जी दाणनि जो इलाज लैशमेनियासिस इंजेक्शन सां कयो वञे थो यादि रखंदा औरतुनि जे चेहरे जे गैर ज़रूरी वारनि जो इलाज लेज़र थेरेपी ज़रिए कयो वञे थो डॉक्टर इरम जुणे जो हाइड्रा फेशियल ऐं चमड़ीअ जे बीमारियुनि जी माहिर यादि रखंदा जुमे जे ॾींहुं 1 बजे खां 3 बजे ताईं औरतुनि ऐं नंढड़नि ॿारनि जी चकास ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि टाइम रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 2 बजे ताईं एड्रेस इंडस हॉस्पिटल लेडीज़ जेल रोड लाड़काणो राब्ते जे लाइ 03433122567 खुशखबरी हाणे अवां जी परेशानी ख़तमु लाड़काणे शहर जो माहिर डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद लंडन ऐं कराची खां तालीम याफ़्ता MBBS गोल्ड मेडलिस्ट FCPS MRCP लंडन एसोसिएट प्रोफेसर कंसल्टेंट

डायग्नोस्टिक सेंटर नज़द घंटी फाटक लाड़काणो। मुआइने जो टाइम शाम जो 3 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं, आचर सुबुह जो 9 बजे खां मंझंदि जो 4 बजे ताईं। डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद, राबते जे लाइ 0333-2619-052 ऐं अपॉइंटमेंट जे लाइ मोहम्मद रफीक सरगाणी, मोबाइल नंबर

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खुलवाएंगे, ठीक है?
1: ठीक है, मेरा दोस्त सुन रहा है।
0: जी बताइए, आपके दोस्त क्या सुन रहे
1: हैं?
0: जी चलिए, सभी लड़काना वारन के पेंजे प्रोग्राम में भलीकार चाहूँ था, मेहरबानी तवा जी तवा ज्वाइन के असा के। और जनाब आपको बताते चले कि हाँ, ब्रेक में कुछ वक्त एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आपका बैलेंस भी मुक गया या पैकेज खत्म हो गया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? डीके, वेलकम इन अवर शो। आप बताइए, फुर्सत के लम्हात में क्या मसरूफियत होती है आपकी? अच्छा, रेडियो या टेलीविजन से कोई एक अच्छी सी बात जो आपने सीखी हो, जो आपको हमेशा याद रहती है? अच्छा, कुछ शेयर करेंगी सब सुनने वालों से कोई एक बात?
2: रेडियो मैंने सच ही सुनाई, न्यूज में सच होती है, खबरें सच होती है, प्रोग्राम जो भी बताते हैं वो भी सच होता है।
0: अल्लाह नहीं, मेरा झूठ बोलने का दिल चाहता है कभी कभी। आप सच आमीन आमीन इंशाल्लाह। आप भी हमें दुआओं में याद रखा करें, हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे लिसनर्स हमारे लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव सोचेंगी जरूर कबूल होगा। हमारे साथ नेगेटिविटी ये है कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले कहते हैं कि काम होना ही नहीं है, तो वो क्या होता है, वो नेगेटिविटी इतनी हमारे अंदर हो चुकी है महफ कि हमें हर चीज नेगेटिव ही दिख रही होती है। तो जो नहीं होने वाली चीजें भी होती है ना, आप स्टार्ट में ही कहा करें इंशाल्लाह ये हो जाएगा, और यकीन करें सब हो जाता है।

0: जाएगा।
1: चले मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया आप शामले प्रोग्राम हुई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रेडियो से कुछ अच्छा भी सीखने को मिलता है आप लोगों को, वरना मुझे ऐसा लगता है आप लोग सिर्फ गाने ही सुनते हैं रेडियो पर। मैं ये चीज नोट करती हूँ, जलाल हलायो, उर्स बुधायो, फौजिया हलायो, ETC, ऐसा ही होता है ना हमारे लिसनर जब भी कॉल पे आते हैं। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहे
2: हैं?
1: भली का चौथा अदा तवां के, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
2: अभी क्या तो कहा था, मेरा खबर तो लाइए यहां से।
1: अच्छा, सबको सलाम दे दें आप, ऐसा करें।
2: अरे आए परिवार में चला कचर क्यों था
1: जी? ठीक है
2: दोस्त ने
1: बुदायो जी
2: और राशिद भुट्टो,
1: ठीक है सबने बारा वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आपने हमें याद किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने और सबको अपने होने का एहसास दिलाया। और नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम
1: यास्मीन, अभी अभी मेरी घड़ी पर नजर पड़ी है, जल्दी से बता दें टॉपिक की बात।
3: बहुत खूबसूरत है, मैं सुनती हूँ आपकी, आपका शो सुनती हूँ, पुस्तक के लिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हूँ।
1: चले गुड हो गया, बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू,
3: आपको हमेशा खुश रखे।
1: सेम टू यू, शुक्रिया, रब सबको खुश रखे, सब खुश रहें, सलामत रहें। ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।
4: वतन की मोहब्बत से सरशार सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है, गूंज रही है GAFM 88 की सरमस्त आवाज से।
5: तो डालो धमाल और बोलो
4: GAFM 88
5: सिंध की आवाज।
6: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, PHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
6: आप सुन रहे हैं,
7: आप सुन रहे हैं
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

बादाम, 2 से 3 बादाम ले लें और इसे जो है मोटा मोटा कूट लें। अब ये जो 3 अदद बादाम जिन्हें आपने मोटा मोटा कूट लिया है, इसमें 4 खाने के चम्मच चीनी के साथ मिलाकर रोजाना सुबह इस आमेजे से इसमें जो है पानी ऐड कर हल्के हाथों से यानी सॉफ्ट हैंड से, नरम हाथों से अपने चेहरे पे से अप्लाई करें और इसे चेहरे की क्लिंजिंग करें। चीनी बादाम के क्लिंजिंग के ये जो अज्जा है, इससे बहुत जल्द आपकी स्किन, चेहरा जो है उसे कील महासे खत्म हो जाएंगे और आंखों की बिनाई तेज करने के लिए भी, ऐनक से निजात हासिल करने के लिए भी सदियों से आजमूदा एक कामयाब नुस्खा है जो मैं आपसे आज शेयर करती चलूं। चंद दाने आपने बादाम के लेने, मिश्री का एक छोटा टुकड़ा लेना है और एक चम्मच सौंफ, ये तमाम अशियां बारीक पीस कर रोजाना रात को सोते वक्त या सोने से कुछ देर पहले मिल्क के गिलास के साथ आपने ये लेनी है। और लेकिन एक दिन में ही जो है मतलूबा नतीजे नहीं मिलेंगे आपको, कम से कम 40 दिन तक तो ये अमल करना है आपने और कंटिन्यू जब ये अमल जारी रहेगा तो ऐनक आपकी जो है उतर जाएगी, बिनाई भी आपकी तेज तरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। मुलायमत और खूबसूरती के लिए आपने बादाम के चेहरे से अपने स्किन की मालिश करनी है और रात को सोने से पहले करनी है, मालिश करने के बाद आपने सो जाना है और सुबह उठ के जो है आपने अपना चेहरा वॉश कर लेना है। इससे आपकी स्किन साफ शफाफ हो जाएगी, दिलकश और खूबसूरत हो जाएगी। और अगर किसी के साथ मसला है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं, तो डार्क सर्किल्स दूर करने के लिए रोजाना रात को बादाम के तेल में पिसे हुए लीमू के छिलके का सफूस मिला कर इसे अपनी आंखों के हलकों पर अप्लाई करें और सुबह चेहरा अच्छे से धो लें। चंद ही हफ्तों में कंटिन्यू जब ये आप अमल करते रहेंगे तो आपके हलके हमेशा के लिए आपकी स्किन से 9-2-11 हो जाएंगे। और बहुत से लोगों को हेयर फॉल प्रॉब्लम है, बालों की लंबाई, घनेपन, दिलकशी के लिए आपको बताती चलूं कि आप बादाम का तेल, कैस्टर ऑयल और एलोवेरा का गूदा, इन तीनों चीजों को मिक्स करके, इनका मिक्सचर बना के बालों में अच्छे से इसे अप्लाई करें। इसे सर पे 2 से 3 घंटे अच्छे से लगे रहने दें, उसके बाद जो है हफ्तों में कंटिन्यू जब ये आप अमल करते रहेंगे तो आपके हल्के हमेशा के लिए आपकी स्किन से 9-2-11 हो जाए।

लाखों जल्दी दोनों आप हमें सुन रही हैं ये तो गुड हो गया. बहुत शुक्रिया रीबा, थैंक यू आप दोनों का. अच्छा जी, टॉपिक हमने आपसे पूछा है कि फुर्सत के लम्हा

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: क्या देख रहे हो
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है GAFM 88 की सरमस्त आवाज से।
1: तो डालो धमाल और बोलो
0: GAFM 88
1: सिंध की आवाज।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by.
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखन्दी आहे, त सेहत नसलन ताई हलन्दी आहे. ही पेगाम कश फाउंडेशन आए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: असेंबली सरकारी नौकरियों के लिए उम्र की हद में 15 साल रियायत देने वालों ठहराव रद्द कर छोड़ो. एमकेएम के शबीर कुरैशी पारा पेश कल ठहराव की हुकूमत मुखालफत कई. घर वजी जाल जा चवा सुप्रीम कोर्ट 15 साल वाली उम्र की रियायत खत्म कर छी है. रुको 5 साल रियायत दई सके थी. अदालती फैसले से अमल करने का पाबंद आयू. सीनियर वजीर शहजी रिना वेमन चवा तो पीपल्स बस सर्विस में समूरी सिंध में हलई वी. कराची की बेहतरी से भी ध्यान है.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: कमी गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी। महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो। बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो। ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो।
6: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
7: GAFM 88
6: नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
7: अजरक के रंगों से रंगी,
8: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज,
8: GFM 88 नेटवर्क।

0: getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: अमरीकी सदर ट्रंप जो सऊदी अरब कतर ऐं यूएई जी दरख़्वास्त ते ईरान ते रिथियल हमिलो रोकण जो ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब जे वली अहद कतर जे अमीर ऐं गॾियल अरब अमारात जे सदर ईरान ते हमिलो रोकण जी दरख़्वास्त कई आहे, जंहिं ते ईरान ते अॼु रिथियल हमिलो 2 खां 3 ॾींहनि लाइ मुलतवी कयो आहे। लॻे थो ईरान सां डील जो सुठो मौको आहे। अहिड़ो माहिदो चाहियूं था जेको न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरनि मुल्कनि लाइ क़बूलियत जो हुजे। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार पिटा करणु आहे। ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातमुल-अंबिया ब्रिगेड जो चवणु आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकिड़े फैसलाइती ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कतरी हमन सभ सां फोन ते राब्तो। बितरफ़न लाॻापन ऐं विच ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल। ॿिन्ही अॻवाननि जो ख़िते जे अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ सिफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान ख़िते में जटादार अमन जे क़याम लाइ सिफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो।

सीनियर वजीर शर्जीली नाम अहमद नासिर शाह बहन जी जे यू आई सरबराह मौलाना फजलुरहमान सा कराची में मुलाकात। सूबाई वजीर मौलाना फजलुरहमान के बिलावल भुट्टो जरदारी तरफा गुलदस्तों भी पेश कयो। मौलाना फजलुरहमान चयो त सियासी दुनिया के आइन पार्लियामेंट ए जमहूरियत के तहफ़ लाइ गड थियणो पवंदो।

अठावी तरमीम थींदी, निज़ाम तब्दील थींदो या वरी मार्शला बि लॻी सघे थी। अठावी तरमीम बाबति फ़ैसिलो पार्लियामेंट में वेठल माण्हुनि खे करणो आहे। असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं। नौशेरो फिरोज़ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाकी वज़ीर मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त पोज़ीशन जी सूरतहाल ते नज़र आहे। हुकूमत अमली जोड़ी आहे, ज़ाहिर नथा करे सघूं। सिंध खे माफ़िया खां आज़ाद करण वारी जिदोजहद जारी रखंदसि। मुर्तज़ा जतोई ऐं संदसि भाउ ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी 11 जून ताईं मुलतवी। सिंध में पाणी जी शदीद खोट बावजूद पंजाब तरफ़ां ज़बरदस्ती खोलियल गैर कानूनी लिंक केनाल ज़रिए पाणी खणत जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी इख़्तियार करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि पंजाब सी जे लिंक केनाल ज़रिए 10,000 क्यूसिक ऐं टी पी लिंक केनाल ज़रिए 8,182 क्यूसिक पाणी गुज़िरियल 4 ॾींहनि खां रोज़ानी बुनियादनि ते खणी रहियो आहे। सिंध में पाणी जी सख़्त खोट बावजूद हिस्सा में मौजूद सिंध जे नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते कंहिं बि क़िस्म जो एहतजाज न कयो। पिंकी जे केस में केतिरा ई वॾा नाला बि साम्हूं आया आहिनि। पिंकी खे घणो ग्लैमराइज़ न कयो वञे, मथस फिल्म ठही वेंदी। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे IG सिंध जावेद आलम मोडो चयो आहे त पिंकी कराची में घटि वधीक लाहौर में रहंदी हुई। मनशियात बाबति टास्क फोर्स जोड़े रहिया आहियूं, शहरी बि मामले ते इतिलाउ ॾियनि।

लाड़काणे जो बोरियालो बंद आबपाशी खाते लाए सोनी जितनी बणियल आबपाशी खाते मोरियालो बंद के बोर्ड जे सीजन में कमाई जो जरियो बणाए छो अरबे रुपया खर्च करण बावजूद लाड़काणे जो मोरियालो बंद मजबूत न थियो बोर्ड जी सीजन में बंद की मजबूती लाए उछलायल पत्थर भी लड़ी वो आबपाशी खाते पारा बंद के महफूज बनाने लाए मुस्तकिल स्कीम ठाण बदरा फ्लड फाइटिंग ते बाड़न जो सिलसिलो जारी 2024 में भी सागी साइट ते वडी मिकदार में पत्थर उछलाया वा जेके भी जाया थे 2025 में दरिया में बोट दौरान फ्लड फाइटिंग में कोड़े रुपये जो पत्थर उछलाया वो जो भी लुड़ी वो आबपाशी खातों बोट खत्म थियण का हथ हथ से रखी वेही रो

इस्लामाबाद जी अदालत ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस जो फैसलो बुधाए छो। अदालत जवाबदार उमर हयात के मौत की सजा बुधाए छी। जवाबदार के 20 लख रुपया दंड भी भरणो पवो। मकामी अदालत के जज अफसल मजूका धुरियन जा दलील बुधन बाद महफूज कल फैसलो बुधाओ। एसटीपी के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हमीद मेमण जो भाव सईद मेमण बलूचिस्तान में अगवा। नौशेरो फिरोजवासी अगोणे एक्साइज डायरेक्टर सईद मेमण के अगवा के वारिसन पारा तस्दीक। एसटीपी अगवाण अब्दुल हमीद मेमण दहशतगर्द भाव सईद अहमद मेमण के खुशदार में अगवा कर भाव बाजियाब कराया वे। सिंधड़ी भरसा पसंद के पड़े त प्लान में अगवा कल टे डिग्री बाजियाब। एएसआई समेत ब जवाबदार गिरफ्तार। डीआईजी मीरपुर खास मूजिब डिंगरी आसिया रेहाना नाजिया की बाजियाबी बाद वाक़े जो केस दाखिल किया है। जवाबदार अफजाल एएसआई बहादुर के गिरफ्तार किया है। मेडिकल बाद डिंगरियन के अदालत में पेश किया वो। सांगण में 14 वरियन की नींगरी मुबैना तौर अगवा। अंबड़ जो धी सा गड पढ़ंदड़ शागिर्द ते धी के अगवा करने जो इल्जाम। मुबैना तौर अगवा थियल शागिर्दाणी की माँ चया है त संदस धी इकरा के स्कूल में गड पढ़ंदड़ शागिर्द अगवा किया है। खेस बाजियाब कराया वे। भाट में भी नारी मुबैना तौर हथियारबंद हथा अगवा। पी की फरियाद से 3 जणन खिलाफ केस दाखिल। नजीर अहमद मौर्य है त जवाबदार धी नजमा के अगवा करण बाद सोना जेवर 5 लख रुपया भी खड़ी व्या।

शहरपुर वेझो सगावाती तकरार तां नौजवान कतल लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल गोठ चतन शाह में हथियार बंदन फसल ते कम कदर बोरियत सईद खान जागीरानी के गोलियो हणी कतल कयो वारिसन जो बिरादरी जे बासरन ते कतल करण जो इल्ज़ाम पुलिस मूजिब वाक्य जो कारण सगावती बुधायो पियो वञे वधीक जांच जारी आहे।

डेस्कम जा वाइस चेयरमैन फकीर रमजान कलवड़ कारकुन की गिरफ्तारी खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा कंदकोट फकीराबाद कपरो बेन शहर में एहतजाज जस्कम पारा एहतजाज गवर्नर जस्कम अगुवाड़न कारकुन खिलाफ कूड़ा केस खत्म कर आजाद कर वे हिंदू बिरादरी जो रूहानी पेशवा मशहूर दरबार रड़की साहब जो गादी नशीन साध राम ध्यान करे वो साध राम सिंगापुर के अस्पताल में इलाज दौरान ध्यान कयो सोग में कश्मोर डहरकी बख्शापुर समेत मुख्तलिफ शहर में हिंदू बिरादरी पैंजा कारोबारी मरकज बंद कर छ्या।

दादू में 14 महीननि खां पघारुनि खां महरूम उस्तादनि जो नाणे ऑफिस आॾो एहतजाज। दादू जोही मेहड़ ऐं केन शाह जे उस्तादनि पारां गॾियल तौर ते एहतजाज कयो वियो। पघारूं जारी करण जो मुतालबो मुज़ाहिरनि मूजिबि फेस 5 ऐं 6 में भर्ती थियल उस्तादनि जूं पघारूं जारी नाहिनि थियूं, पघारूं जारी कयूं वञनि। ऐं कोडी जी भरिसां पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादकारनि जो मुज़ाहिरो। मोहबत वाह जे आबादकारनि पारां पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। अॻवाणनि चयो त इलाइक़े जा बासर माण्हू इरीगेशन अमलदारनि सां मिली पाणी चोरी करे रहिया आहिनि। पाणी चोरी रोके पाणी फराहम कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
7: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
8: हर चप्पा हर गोशा
9: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
8: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जसूस।
1: असां पाणी साफ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
2: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
1: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
3: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
8: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती हुई।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे,
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पिनकी केस में केतिरा ई वॾा नाला बि साम्हूं आया आहिनि। पिनकीअ खे घणो ग्लैमराइज़ न कयो वञे, मतिलब फिल्म ठही वेंदी। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे आई जी सिंध जावेद आलम ओढो जो चवणु हो त पिनकी कराचीअ में घटि वधीक लाहौर में रहंदी हुई। मंशियात बाबति टास्क फोर्स जोड़े रहिया आहियूं, शहरी बि मामले ते इतला ॾियनि।

लाड़काणे जो मोरियालो बंद आपाशी खाते लाए सोनी झिटकी बणियल आपाशी खाते मोरियालो बंद करे बोर्ड जे सीजन में कमाई जो जरियो बणाए छो अरबे रुपया खर्च करण बावजूद लाड़काणे जो मोरियालो बंद मजबूत न थियो बोर्ड जे सीजन में बंद की मजबूती लाए उछलायल पत्थर भी लुड़ी वो आपाशी खाते पारा बंद के महफूज बणाने लाए मुस्तकिल स्कीम ठाण बदरा फ्लड फाइटिंग से बाढ़ जो सिलसिलो जारी 2024 में भी सागी साइट से वे पैमाने पत्थर उछलाया वह जी भी जया थी 2025 में दरिया में बोट दौरान फ्लड फाइटिंग में करोड़े रुपये जो पत्थर उछलाया वो जो भी लुड़ी वो आपाशी खातों बोर्ड खत्म थे हथ हथ से रखी वेठो है।

इस्लामाबाद जी अदालत टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस जो फैसलो बुधाए छो। अदालत जवाबदार उमर हयात के मौत की सजा बुधाए छी। जवाबदार के 20 लख रुपया दंड भी भरण पव। मकामी अदालत के जज अफजल मजूका धुरन जहा दलील बुधन बाद महफूज कल फैसलो बुधाए छो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: किरु शोक होना तो के मुझे रो पाए तैयार थे जो
3: तू आज भी हसी
2: थोड़ो पाए तो देखार
4: ना माँ मा थकी पई आया
2: न पुट ही थकना है रत जी कमी है दिसता केडो न फिको थी हुआ है तुझो चेहरो
4: छा कया माँ
2: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद से आई आई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से उनन साई त खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बा रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही पहंजो ख्याल रखन बेन खांप वधिक जरूरी है।
3: ये मेरी बातें तेरे जिम्मे अब ये तुझको निभानी है।
5: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
6: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इनन सबनन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते जे लाए 0327-99-84-763।
7: कमी गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी। महरबानी करे एहतियाती उपाय वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
8: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
9: सुनते रहो GFM 90.8।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार
2: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमंदी रही भेरो भेरो मा थी रही ही ना मुझो भी यो ही हाल हो
3: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी माँ तो एतरो थकी थी पवा छा कयो हो तवा

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

Ya Rasool Allah, wa sallam alayka.

0: मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं, मेरी मुश्किल नू हल करी आका तेरे वास्ते कोई महाल नहीं। मैं तर पां दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं, मेरी मुश्किल नू हल करी आका तेरे वास्ते कोई महाल नहीं। मैं तर पां दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं। ओ मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, किस गल दियां सोनियां मान करां। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, किस गल दियां सोनियां मान करां। मेरा इश्क भी जामी वांगा नहीं, मेरा होश भी वांगे बिलाल नहीं। मैं तड़पां दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं, मेरी मुश्किल नू हल करी आका तेरे वास्ते कोई महाल नहीं। मैं तड़पां दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं। ओ करी करम तू पार लगा देवी, ना वेखी मेरिया बदिया नू आदीब नसीब उना कुत्तिया दे जड़े दर दिल बरते पली दे रात समूरी पारे दे दे ते हुजार छुड़े दे हल दे हर वेले देखन मेरे यार दी सूरत बर बैठे गुलाम वसल दे सोना फकीर असा बद किस्मत थे से जो इत जुदाई विच पै जल दे। ओ करी करम तू पार लगा देवी, ना वेखी मेरिया बदिया नू मेरे इतने गुनाह हिनी आका मेरे इतने गुनाह हिनी आका मेरे सर दे इतने बाल नहीं। मैं तड़पां दूर मदीने से इत्थे बचन दा कोई हाल नहीं, मेरी मुश्किल नू हल करी आका तेरे वास्ते कोई महाल नहीं। मैं तड़पां दूर।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

भारत पाकिस्तान की मुखलिस ए संजीदा गालिन वरी आछ के नजरअंदाज कर छिकतान अगराई ए तशद्दुद जो रस्तो अख्तियार कयो। हक की जंग में पाक फौज दुश्मन के मोह ट्रोड़ न विसरंदड़ सबक सेखारियो। हाँ दुश्मन कदें भी पाकिस्तान डां बुरी नजर से दिसण की हिम्मत न कंदो। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की फैकल्टी ए तरबियत हेठ ऑफिसर के खिताब। शहबाज शरीफ चयो तो पान के ताकतवर समझंदड़ दुश्मन के जंग का पोए सफारती मैदान में भी नाकामी नसीब थी ए पाकिस्तान जो मौकफ दुरुस्त साबित थो। दुनिया भारत के कूड़े बयानिए के रद्द कर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में अमेरिका ए ईरान विच में जंग बंदी थी।

0: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
1: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधिक मशवरे ए राब्ते जे लाए 0327-99-84-763।
5: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: बेगन बनियो तो इन करे इसमें थोड़ो वक्त भी लगे तो परेशान थे जरूरत कने का इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि पेशेंट हूँ फल जरा जरूर तैयार थन्दा असाजी होम्योपैथिक की दवा से एतरो रिजल्ट है अवं पान जो खाण शुरू कह तो आस्ते आस्ते पान महसूस कौ तो यार ये दवा तो दिसण में तो अचे थी पानी आ थोड़ा जो असा हूँ पीण में दिसण में तो पानी आ पर पानी ही को अलग में कड़ो जादू आ जो अस जिसम में ची वे तो ती अस मना मचाए तो अबा होशियारी का तैयार थी हाँ मैं अची वहाँ तो ये सब शे दवा जा हर दवा जो टाइम पीरियड कम किरदार होंद तो इन में ये न चबो तो होम्योपैथिक फिलाप है होम्योपैथिक फिलाप को को हर दवा जो तरीक़ेकार पोस्ट पी पोजिशन रखे तो पर शर्त है तो होम्योपैथिक होम्योपैथिक होमत है तो वह हिकमत ही हो एलोपैथिक एलोपैथिक ही हो तब अस चौदह हाँ दवा भले न लगी पर उन मेहनत पी कई मिलाए किलाए टिलाए सिलाए कर दवा देने से मुराद यो तो वह पाँचा दुका पे उन्हें यह खबर को साइड इफेक्ट थी सके तो अच्छा होम्योपैथिक में जो साइड इफेक्ट्स जारो जो शे आए नुकसान वाली शे आए पर वजह चाहे होम्योपैथिक से गड बी का दवाओं जो मिलाए करे इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट थी सके इतनी जगह है तो उनमें साइड इफेक्ट थी सके तो जो उनकी दवाओं असर कन वरी असाजी दवाओं असर कन तो बई थी सके कें पेशेंट के नुकसान दई सके बाकी तकरीबन होम्योपैथिक में को साइड इफेक्ट को नुकसान का बीमारी के वधिक थन जी का वजह कने का
1: जी असमिन अमा बदो पया जी सकर नवाब शाह एफएम 90.8 जिला स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सान मावा जो पेंजो मेजबान सलीम अहमद सरगणी मुसागद सकरन जा मशहूर इमारत होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब समय अवा डॉक्टर साहब का होम्योपैथिक तरीका इलाज हो इलाज कराए दवा वी सो था डॉक्टर साहब हर बीमारी जा मशहूरों मारूफ डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब खानदानी डॉक्टर से गोगो लेक्चरर पिण आन समय होम्योपैथिक में डॉक्टर साहब रिसर्च कह काफ़ी अज के नयू नयू बीमारू पैदा थन थी उन्होंने होम्योपैथिक में इलाज है होम्योपैथिक में हर बीमारी जो जदीद इलाज है जो जड़ का ख़त्म थे तो शफा ज अलाज साहब जो कम हों अवं डॉक्टर साहब हीलो वसीलो कोशिश कर सको था दुआ घुरा अल्लाह का दवा खाइंद इंशाल्लाह ज़रूर सेहतियाबी थी होम्योपैथिक में फ़र्क यो है तो होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट को यानी जै श दवा वा उन से फायद जरूर पवो अगर कें अस मरीज के फायद नो पी सके तो उनके नुकसान कें भी शो यानी कोई साइड इफेक्ट इन में ना है तद होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट ना है हकीकत में भी होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट ना है डॉक्टर साहब हिंसर सकरन शहर में पेंजी क्लिनिक स्टार्ट कर चुका है स्टेशन रोड से हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जिनारे से डॉक्टर साहब जिन की क्लिनिक है डॉक्टर साहब के दादो मरहूम हाजी इनायत लाल राजपूत जिनकी पुरानी क्लिनिक जी हुई वह ही डॉक्टर साहब जन की क्लिनिक है यानी पैं खानदानी क्लिनिक में अची पैं सेटअप खोलो उत अची वेठा पे शेरवानी किरी में डॉक्टर साहब हुआ इन वक्त हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन में डॉक्टर साहब जिन की क्लिनिक है होम्योपैथिक तरीका इलाज में मरीजन जो इलाज कन था बीमार के ख़त्म करण में मदद कन था समय डॉक्टर साहब मशहूर मारूफ डॉक्टर है डॉक्टर साहब काफ़ी तजुर्बो पिण रखे तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर नोट कंदा 0327-9984-7603 यो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर है एफ एम से कॉल करने लाइ भी है क्लिनिक से भी यही नंबर मौजूद होंद है समय होम्योपैथिक तरीका इलाज में एक दफ़ा इलाज कराए दिसो इंशाल्लाह जरूर सेहतियाबी थी मां के नंबर नोट कराए यो नंबर लिखी छो सु अचो डॉक्टर साहब ने कॉल कर सको था डॉक्टर साहब की टाइमिंग सुबह जो 9 का शाम 6 वगे तई जुमे ते भी डॉक्टर साहब सुबह जो 9 का मंझन 12 वगे तई डॉक्टर साहब क्लिनिक ते मौजूद हुंदा है डॉक्टर साहब कॉल वठूं था केर सु

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्का जी जंग में पाक फौज दुश्मन के मोह टोड़ ए न विसरंदड़ सबक सिखारियो। हाने दुश्मन कदें भी पाकिस्तान डां बुरी नजर से दिसण की हिम्मत न कंदो। ईरान तकरार पूरे खिते के गैर यकीनी वाली सूरत हाल ए मौशी कमजोरी में धिके छो है। पाकिस्तान के सफारती कोशिशों के नतीजे में ही अमेरिका ईरान जंगबंदी जो ऐलान किया। वजीर आजम जो कोयटिया में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की फैकल्टी ए तरबियत हेठ ऑफिसर के खिताब। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाण खे ताकतवर समझंदड़ दुश्मन के जंग का पोए सफारती मैदान में बे शिकस्त नसीब थी आहे ऐं पाकिस्तान जे मौक़िफ़ खे दुनिया तस्लीम कयो। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम जे हक़नि जी लाॻीतो वकालत कई आहे। वालारल कश्मीर वासियुनि जी इख़लाक़ी सियासी ऐं सफारती हिमायत जारी रखंदासीं। अफ़गान तालिबान रिजीम खे दहशतगर्द टोलनि ख़िलाफ़ असराइता क़दम खणणा पवंदा।
2: बलोचिस्तान में जटादार अमन लाइ अवाम दोस्त पॉलिसी ऐं बहितर वारी अंटर आहे। पाकिस्तान जी तरक्की रोकण जी कोशिश कंदड़ सदाई नाकाम थींदा। कोयटा में फौजी ऑफिसर खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फ़ौज हर क़िस्म जी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाक फ़ौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान की तरक्की के प्रोपेगेंडा या परदेही सरप्रस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी के जरिए रोके न तो सकजे। जदीद जंगी तरीक़ेकार तेजी से तब्दील थी रो है। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन जिन्हीं फौजन में गडियल सहकार से जोर भर।
1: ईरान ते बीहर हमलन की जरूरत पैजी सके थी। ईरानी क्यादत डील लाए मिंथू कर रही है। डील न थी तो हमलन का सवाय बो को रस्त न बचंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गाल बोल। डोनाल्ड ट्रंप चयो तो ईरान के नवा एटमी हथियार ठाण लाए वक्त नथा दई सकूं। ईरान वट अजा भी जवाबी कार्रवाई की थोड़ी सलाहियत मौजूद है। ईरान आबनाए हुरमज के 47 वरन का स्क्री कौम तौर इस्तेमाल कर रो है। अड़ी सूरत हाल के बर्दाश्त न तो कर सकें।

0: दुनिया सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार फिटा करणु आहे। ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातम लंबिया ब्रिगेड चयो आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकड़ी फैसलाइती ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो कतरी हमनसब सां फ़ोन ते राब्तो, ॿिए तरफ़नि लाॻापन ऐं विच ओभर जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ॿिन्ही अॻवाननि जो ख़िते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान ख़िते में जटादार अमन जी क़याम लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो।
0: शदीद कोट बावजूद पंजाब तरफ़ां गैर क़ानूनी लिंक कैनाल ज़रिए पाणी खणत जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदा ऐं आपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी इख़्तियार करे वरिती। ज़रियनि मूजिब पंजाब सी जे लिंक कैनाल ज़रिए 10,000 क्यूसिक ऐं टी पी लिंक कैनाल ज़रिए 8,122 क्यूसिक पाणी गुज़िरियल 4 ॾींहनि खां रोज़ानी बुनियादनि ते खणी रहियो आहे। सिंध में पाणी जी सख़्त खोट बावजूद हिसा में मौजूद सिंध जे नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते कंहिं बि क़िस्म जो एहतजाज न कयो।
1: सिंध असेंबली सरकारी नौकरियुनि लाइ उमिरि जी हद में 15 साल रिआयत ॾियण वारो ठहराउ रद्द करे छॾियो। एम क्यू एम जे शबीर कुरेशीअ पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत मुखालफ़त कई। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो त सुप्रीम कोर्ट 15 सालनि वारी उमिरि जी रिआयत ख़तमु करे छॾी आहे, रुगो 5 साल रिआयत ॾेई सघिजे थी। अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जा पाबंद आहियूं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो त पीपुल्स बस सर्विस बि समूरी सिंध में हलाई वेंदी। कराचीअ जी बहितरीअ ते बि ध्यानु आहे।

राजीव शर्जीली नाम मेवन नासिर शाह बेन जी जे यू आई सरबरा मौलाना फजल रहमान तक रांची में मुलाकात। सूबाई वजीर मौलाना फजल रहमान के बिलावल भुट्टो जरदारी दफा गुलदस्तो भी पेश कयो। मौलाना फजल रहमान चयो तो सियासी दूरियन के आइन पार्लियामेंट जमहूरियत जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु थियणो पवंदो।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है।

0: हक जी जंग में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ न विसरंदड़ सबक सेखारियो। हाने दुश्मन कदें भी पाकिस्तान डां बुरी नजर से दिसण की हिम्मत न कंदो। ईरान तकरार पूरे खिते के गैर यकीनी वाली सूरत हाल मुआशी कमजोरी में धिके छो है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में ही अमरीका ईरान जंगबंदी का ऐलान किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की फैकल्टी और तरबियत हेठ ऑफिसर के खिताब कदे तो पान के ताकतवर समझदड़ दुश्मन के जंग का सफारती मैदान में भी शिकस्त नसीब थी और पाकिस्तान के मौकफ के दुनिया तस्लीम किया। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के हकन की लागी तो वकालत कई है। वालारियल कश्मीर वासन के इखलाकी सियासी और सफारती हिमायत जारी रखासी।
1: चटादार अमन लाए अवाम दोस्त पॉलिसी है बेहतर हुकमरानी अर्टर है। पाकिस्तानी तरक्की रोकने की कोशिश कदर सदाई नाकाम थींदा। कोयटा में फौजी ऑफिसर के खिताब कदे फील्ड मार्शल आसिम उन्हें चाहिए है हथियारबंद फौज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे लाए पुरसम है। पाक फौज अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे लाए पुरसम है। पाकिस्तान की तरक्की के प्रोपेगेंडा या परदेही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी जरिए रोके न तो सके। जदीद जंगी तरीकेकार तेजी से तब्दील थी रो है। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन जिन्हें फौजन में गडियल सरकार से जोर भर।
0: ईरान से बीहर हमलन की जरूरत पैजी सके थी। ईरानी क्यादत डील लाए मिंटू कर रही है। डील न थी तो हमलन का सवाल भी को रस्त न बचंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गाल बोल। डोनाल्ड ट्रंप चयो तो ईरान के नवा एटमी हथियार ठाने लाए वक्त नथा दे सकूं। ईरान वट अजा भी जवाबी कार्रवाई की थोड़ी सलाहियत मौजूद है। ईरान आबनाए हुरमस के 47 वर का स्क्री कौम तौर इस्तेमाल कर रो है। अड़ी सूरत हाल के बर्दाश्त न तो कर सकें।

0: अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हथियार इकट्ठा करणु आहे। ईरान जे मफ़ादनि इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पेशकियान चयो आहे त तेहरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हक़नि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं। ईरानी ख़ातिम लंबिया ब्रिगेड चयो आहे त ईरानी फ़ौज जो हथ बि टिकट ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकड़ी फैसलाती ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी।
1: सिंध में पाणीअ जी शदीद खोट बावजूदि पंजाब तरफ़ां गैर क़ानूनी लिंक कैनाल ज़रिए पाणी खणत जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदा ऐं आपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी अख़्तियार करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि पंजाब सी जे लिंक कैनाल ज़रिए 10,000 क्यूसिक ऐं टी पी लिंक कैनाल ज़रिए 8,122 क्यूसिक पाणी गुज़िरियल 4 ॾींहनि खां रोज़ाने बुनियादनि ते खणी रहियो आहे। सिंध में पाणीअ जी सख़्त खोट बावजूदि इरसा में मौजूदु सिंध जे नुमाइंदनि ऐं आपाशी खाते कंहिं बि क़िस्म जो एहतजाज न कयो।
0: सिंधी असेंबली सरकारी नौकरियुनि लाइ उमिरि जी हद में 15 साल रियायत ॾियण वारो ठहराउ रद्द करे छॾियो। MQM जे शबीर कुरेशी पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत मुखालफ़त कई। घरूअ जे ज़ाल सरंजार चयो त सुप्रीम कोर्ट 15 सालनि वारी उमिरि जी रियायत ख़तमु करे छॾी आहे। रुगो 5 साल रियायत ॾेई सघिजे थी। अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जा पाबंद आहियूं। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमण चयो आहे त पीपल्स बस सर्विस बि समूरी सिंध में हलाई वेंदी। कराची जी बहितरी ते बि ध्यानु आहे।
1: सिक्योरिटी फोर्सिस जो उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 22 भारतीय हामी ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया। SPR मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े शेवा में सैनिटाइज़ेशन ऑपरेशन दौरान ख़ारिजियुनि जे थाकनि खे असरहते अंदाज़ में निशानो बणायो वियो। फायरिंग जी ॾे वठि में भारतीय हामी 22 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया। हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथु कयो वियो।

0: लोगों को मौजूदा जमहूरियत के सम्राट मुंतकिल करने का जो वाहिद टूल है वो एक एम्पावर्ड इफेक्टिव फाइनेंशियली इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। अगर उस पर बात की जाएगी तो यकीनी तौर पर हम जो है वो उस पर सपोर्ट करेंगे।
1: देखिए एमकेएम भरपूर साथ देगी 28वीं तरमीम का, जो सूबाई हुकूमत है तो टोटली फेल हुई हुई है।
2: ये गालियों कितने दिन जो है खबर ना है तो करें ये गालियों क्यों तो देखो टिप्पणी करे सर।
3: एक मिनिस्टर कहता है 28वीं आईनी तरमीम पे काम हो रहा है, लॉ मिनिस्टर कहता है ऐसी कोई बात नहीं।
4: सोशल मीडिया कैसे बुझुका है ख्याल सामो आई का नहीं का अगर इंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजी आवाम खां बीठी जंहिंमें आवाम जो मफ़ाद हूंदो।
5: पीपल्स पार्टी अठाई आइनी तरमीम के मीडिया जो खबरू करार दई छो। एम के एम पारा मकानी इदारन के खुद मुख्तार ब्रांड वाली शिक शामिल होने की सूरत में तरमीम की हिमायत जो ऐलान। के टी न्यूज से गलंदे पीपल्स पार्टी एम पी एस अठाई आइनी तरमीम जो को भी मसवदो सामू ना आयो। इहा तरमीम अया ताई मीडिया की खबर ताई महदूद है, तबसरो छा कजे। एम के एम अगवान अठाई आइनी तरमीम में मकानी इदारन की शिक शामिल हूंदी तो उन हिमायत कंदा।
6: पिंकी है ये भी इसी सिलसिले की कड़ी थी कि हमारी टेंटिकल्स में थी, उसमें आई है अभी हमारे फोकस में भी काफ़ी अच्छे से। वो साइबर स्पेस में जो कि नेट के जरिए ये ड्रग्स बेच रहे थे उनको भी हमने उनकी पकड़ की है और उसके लिए भी अलग से लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं। वालों ने नालायकी की, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, आज तक आप देखेंगे इंशाल्लाह जीरो करके क्वीन बना के उसकी आप कैप्शनिंग करें कि क्वीन पिंकी और उसकी बात करें तो उस पर वहाँ पर भी अमल होना चाहिए। खतरा ये है कि कोई इसको नुकसान न पहुँचा दे ताकि चीज़ें आगे न बढ़ें इतने प्रेशर में कि इतने मुझ पर कैसे हो गए, इतनी ख्वारी बदनामी, मेरे भाई भी पकड़े जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बाहर मुल्क से बाहर बैठा हुआ बंदा वो अपना अकाउंट यूज़ कर रहा है, तो इसी तरह नारकोटिक ड्रग का कारोबार भी साइबर स्पेस में मुंतकिल हुआ है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि हमने अपना घर साफ करना है पहले, ये हम हमारी जिम्मेदारी है।
7: पिंकी केस में केतरा ही वड़ा नाला भी सामू आया है। पिंकी के घणो ग्लैमराइज न कयो वञे, मथस फिल्म ठही वेंदी। कराची में गालंदे आईजी सिंध जावेद आलम ओडो चयो है त पिंकी कराची में घट वधीक लाहौर में रहंदी हुई। ऑनलाइन मंशियात विकरो कंदड़न की फहरिस्त भी तैयार करे वरती है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सां हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM
3: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।